सैदा सेना बल्ले आरे, सैदा सेना बल्ले आरे सचिया, सैदा सेना बल्ले आरे तो दिया गे आरे

तेरी बाटी आई कोई ना वो ना जा ने मेरा ना वो ना जाने मेरा सचिया बाट जा कोई ना वो ना जा ने मेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: अपना जीवन सफला करो जी।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, एक ओंकार सतनाम करता पुरखो निरपल

त्वप्रसाद त्वमरछंद हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अंशिज तेज उदार अनभिज रूप दुर्

भूत बन चारि छित छौना सबे दूता थारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है। त्रिण के बछैया धन लोभ के तजैया ते तुगौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया ताहे पंच की बडैया देत बगला बिडाल ब्रिक ध्यान ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तिन्नो जानी पै बखानी ना है असना प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी गजैया कहे नभ के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है। फल के बछैया ताहे बांदरी गजैया कहे आदि सफिरैया तत भूत कह पछानी है। जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आके भजैया सो चकूर सममानी है। सूरज सिवैया ताहे कौल की बडाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कछ मछ तेंदुआ कहत सब कौल नाभ।

तेरु को कन्हैया ना कंस को बधैया जा मदूत काहियत है। मूड रूड पीट तना कूड़ता को भेद पावे बूझत ना दाहे जाके रखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी सार सदा व्रत पाल जम जाल ते रहत है। जोगी जट्टाधारी सती सचे वड्डे ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पै सहत है। न्योली करम जाल हो

नाच फिरत मोर बांदर करत गोर दामनी अनेक भाव करियो करत है। चंद्रमा शीतल न सुर सित बत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेद चारी सनत कुमार से तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन।

मुख मन ते न मुंड ने हो रायु आदि सको कामना दीन सदा धामना प्रवीण एक भावना बीन कस भाव जगदीश को शीस पट कत जाके कान में खजूरा दस मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के शोक सौ आग गोचरय फल फूल को भछैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न बोक सौ कहा भयो भेड़ जो खसत शीस वृक्षन सो माटी को भछैया बोल पूछ लीज जो कुसौ कामना दीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कस भेड़ पर लोक सौ नाचुई करत मूर दादर करत शोर सदा गन घोर गन करुई करत है एक पाए ठंड सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है पाहन अनेक जुग एक ठौर बास करे काग और चील देश देश विचरत है ज्ञान के बिन मादान में नहु जलिन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है जैसे एक सौंगी कहूँ जो किया बेरा के बने कब हूँ संन्यास वेश बन के दिखावई कहूँ बन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की कुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे बारी कहूँ दंड तारी हो गए लोग न भरमावई कामना दीन पर नाचत है नाचन सु ज्ञान के बीन कैसे ब्रह्म लोक पावई पंच बार गीदर पुकार पर शीत काल कुंचर ओगदहा अनेक दा पुकार ही कहा भयो जो पे कल वत्र लियो कांसि बीच चीर चीर चोर डाकु ठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़ो जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक दार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना बीन कस ज्ञान को विचार ही ताप के सहित जो पे पाइये तापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है जाप के किए तो जो पे पायत अजाप देव बूदना सदीव तुही उचरत है नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल बो करत है आग में जरत गदराण की परत कर पताल के बस क्यों भुजंग ना तरत है।

करता करीम सोई राज करहीम ओई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही के सेव सब ही कुकुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहु राम सीत सोई बुझाओ निवाज ओई मन सब एक बयान एक को भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के।

जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नाद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते काछ माछ केते उनको करत भछ केते अच वच हो।

तेज ज्यों तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताहि तयो भज सब ताहि मैं समाहिंगे। कुकत फिरत कित रोत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग बासी कित मदिना मका निवासी कित उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुअप जड़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के बीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दान बटे बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जाप सी घास हारे चंदन लगाए हारे चुअचार भूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटली बहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब बज हारे पंडित तपंत हारे तापसी।

सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जोनीय छयाद अद्वयजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं गभैर्निर्विखादं अछेदं।

देहदो खंका हो खुदि रोग के सोख सोखंका हो देव विद्या का हो दैत बानी का हो जा छगंदर में कि नर कहानी कहूँ राजसी सात की ताम सी हूँ कहूँ जोग विद्या धरे ताप सी हूँ कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जोग तंग कहो भूम की भुगत मैं भरम भुगतंग कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हूँ कहूँ जच विद्या धरे मानवी हूँ कहूँ राजसी हूँ कहूँ राज कन्या कहूँ श्रेष्ठ की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम वाणी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपंग कहूँ मद्र वाणी कहूँ क्षुद्र स्वरूपंग कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपंग कहूँ चेष्टाचार चित्र

वाक्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं चंद्र जीतंग कहूं सौत्र धारंग कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेज वाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नागवाणी कहूं गारुड़ गूढ़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूं वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूं छल छाला धरे छत्र धारी कहूं राज साजंग धीराजाधिकारी

अभ्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छा स्वरूप नाश अंतुट तेज अनुकूट भंडार दाता दुरंत सर्वं प्रकार अनुभूत तेज अंशित जगात करता सदिव हरता सनात आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम बरम नहीं धर्म ध्यान जय निर्गेह नहीं व्योतपान जय जात बात नहीं सत्र मित्र जय नेह गेह नहीं चिन्ह चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात बात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाव नहीं वर्ग व्याद जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नाश जय याद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग अच्छे स्वरूप अखय भंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेव जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अच्छय अतुल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत खाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन वितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई उर्ध पाह देशन भ्रमंत कई उर्ध मध्य पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्रत उचरंत वेद कई गोक काव कथत कतेव कई अग्नहोत्र कई पवन हार कई कर्त कूट मृत को आहार कई कर्त साग पै पत्र भच्छ नई तदप देव होवत प्रताच्छ कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जगे याद करम कहूँ अग्नहोत्र कहूँ

कई तीरथ तीरथ परमत सुवरम कई यज्ञ होत्र कई देव करम कई गर्त वीर विद्या विचार नहीं तदवतास पायत न पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धरम कही सिमृत शास्त्र दुचरत सुकरम न्यौली याद करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घदान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार कही भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जल निवास कई अग्नताप कई जपत ओर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदवतास पायतन अंत कई गलत कोट विद्या विचार नहीं तदवदिष्ट देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत हो मर जगदान बिन एक नाम एक चित्त लीन भो कुटु सर्व धर्मा विहीन त्व प्रसाद तोटक छंद जय जंप जुगण जो जुवंग बैकंपो मेर पयाल भुवंग तप तापद सर्प जलेर तलंग धन उचर देन्द्र कुमेर बलंग।

अकाल है, अबाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न शोक है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न शीत है, न सोच है, न ग्राम है, न गाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न चल है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैख है, न भेख है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभ्रम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत भेद है, बलि

बात मानिए, न जात बात मंत्र मित्र सत्र सनेह जानिए। सदीव सर्व लोक के कृपाल ख्याल मै रह, तुरंत द्रोह देह के अनंत भांत सोद है।

हस्त कीट विगत बस सब ठौर मैं निर्धार जात पात न तात जय को मंत्र माधन मित्र सर्व ठौर बिखेर में उजे चक्र चहन न चित्र आद देव उदार मूर्त अगाध नात अनंत आद अंत न जानी अभिखाद देव दुरंत देव भेव न जान ही जे मरम वेद कतेब सनक औसन के संदन पावे ही न हसेब जाछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्ग अपार नेत नेत पुकार ही शिव सकर मुख चार सर्व सबद बतार के तर जाप ही जह जाप आद देव अगाध तेज अनाद मूर्त अताप जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहे ओ विराज तिराज राज प्रवीन जाछ गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय न माहे वैष्ण के बिखे विराजे सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म से एक स्वरूप रात दिवस न मध उर्द न भूमा का स अनूप जात जन्म न काल

ध्याय ध्याय थके महामुन गाए गंधर्व पार, हर हर थके सबे नहीं पाइये तह पार। नारद आदक वेद व्यासक मोन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सबे कर कोट कष्ट दुरंत। गाय गाय थके गंधर्व नाच पच्र पार, सोत सोत थके महा

दुर्जन दल दंडन असुर बिहंडन दुष्ट निकंदन आद वृत्ते चक्षरासुर मारण पति दो उदाहरण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय ओसी महकासुर मर्दन राम कपर्दन छत्र छिते आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप ते चंडासुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र

डावरूढ़ वंगे बभर्भ वंगे भुजाफर अंगे तेज बरंग लंगुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायत जमके भूखण दमके अद्धित जमके फुंग फनंग जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन रम्भक वर्दन दैत जिणंग चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून किते दामनी दमंगण धुजा फरंगण फणि फुंकारण जोत जिते सरधार विपरखण दुष्ट प्रकरखण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन भूमा कासल उर्दे दामनी प्रहासन सुषम निवासन सृष्ट प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन जोज प्रमाचन हृदय नराचन धरम प्रते।

कारंच छुरहारण धूम धुंगारण द्रप मथे दाढ़ विप्रतंते जोग जयंती मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रते जन अष्ट भुजे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन वरम बिना संधरम दुजे गुंगुरु गमंगण।

सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे काव रूप मारे अधम धारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंगारोहण बितल तले जय जय ओसे सब डौर निवासन बाय पताल आकाशन ले संकट निवारण धम उदाहरण तेज प्रकार कंड धुंध तबे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद नाद गाद छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय ओसी सत्र प्रकरण आद नीला गाद अभे चंचला चकंगी अलग भुजंगी धुंध तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक।

बारज बिलोचन प्रतन विमोचन सोच विसोचन कौच कसे दामनी प्रहासे सुख सरना से शुभ्र सुभा से दुष्ट क्रसे चंचला प्रांगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय ओसी मैं खा सुर मर्दन आदनाथ का दुर्धन।

खत्रियान खतंगी अवया वंगी आद अनंगी अगाध कटे ब्रड लाज बेहंडन चुर दंडन तेज प्रचंडन आद ब्रते सुर नर प्रतिपारण।

वी प्रकार खंड सर वर वर खंड दुष्ट प्रतर खंड पितल तले अष्टायद बाहन बोल ले बाण संत पनाहन गूढ़ गते जय जय होसी मैं का सुर मर्दन आद नाद गाद वृते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण।

ले गर्भ गही ले जोत जति ले तुंद मते अष्टायत जंगण सहस्र जंगण दामिन दम गण आद बते डुक डुकी दमंके बाघ बबंके बुजा फुरंके शुद्ध गते जय जय होसी मैं का सुरमर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुरमारण नरक निवारण बति दो दारण एक बटे पापान बिहंडन दोष प्रचंडन खंड अखंड।

रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दंदान वरदन बिडाल वधे सरधार विपरखण दुर्जन दरखण दुल बरखण धरम दुजे धूमराज विदुंसरण सुन।

अखंड अखंड प्रचंड पारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार है। पार न पाय सके पद मापद भेद कते भेद उचारे। रोज ही राज बिलोक राज करो करो हानि की रोज नटार है। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए। देव अदेव खपे हंग वेव न बेव लख्यो ब्रह्म शिव ब्रह्माए। वेद पुराण कतेव कुरान हसे थके कर हाथ न आए। पूर्ण प्रेम प्रभाव बिन

दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद महापद ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह विहीन स्नेह सबोतन नेह विरक्त अगे है छ है। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दे। काहे को डोलत है तुम रे।

जच भुजंग सो दानव देव भेउत मैं सब ही कर ध्यावे भूम आकाश पतार सादर जच भुजंग सब शरण आवे पाए सके नहीं पार प्रपाहू को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सभी खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हो मिल गायो वेद गतेव न भेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनातन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन मै जह को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण देव कुरान वेद निर्वाण सब बचहारे वेद न पाए सके अन वेद को खेत तह अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग त्यारे याद नाद अगाद बेगद वेग जप्यो तिन्हि कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बोधान महाव्रत धारे देश फिरो कर वेश तबोधन केस धरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे

अत्र के चलैया चेत छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महासत्रन के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़िया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूं के मान है। ज्ञान हूं के ज्ञात महाबुद्धता के दाता देव काल हूं के काल महाकाल हूं के काल है। पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमालय ध्यावे गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना की देख बांधे आर बक्के आर भी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे सी जाने पछम के पछम ही पछाने निज काम है। मरहटा मंगेल तेरी मन सो तपस्या कर दीढ़ वै तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहल मांग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले बाप पुंज को मलत है। गोखा गुण गावे जिन मजीन के शीस न्याव तिपति दे आए दुख देह के दलत है। जिन्हें तोहे दयो तिन पूर्ण प्रताप पायो सर्वधन दाम फल फूल स्व फलत है। देव देव दान को सुरेश दान वान को महेश गंग दान को अवेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू बेन दीन साध दीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व पिता के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल पाछे पहुँचत ताहि चिट्ठी की चिंगार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है। किते ससुरासी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। किते महादीन किते व्यास।

छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप कालिंद्र के गोल के हंस निश सिहारू में ही रसी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चले सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सुरासी सुरंगाबाद निके रही झूल के जम्पासी चंदेरी कोट चांदनी सी जाना गढ़ की रत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसी पूर सीसा सी सुरंगाबाद निके सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा ने हंस कैसी हाजीपुर देख मोहियत है चंदन सी जम्बावती चंद्रमा सी चांद्र गिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगधार बकांसी बुलंदाबाद कीरत तिहारी की ओजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी इसके दुरंगी मकरान के मृतंगी तेरे गीत गायत है भकरी कंधारी गोर कखरी गर्द जचारी बौन के आहारी तेरो नाम दियायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर में विराज जहाँ जहाँ जाइयत है पूर्ण प्रभता भी यंत्र मंत्र देता बिना

जी गुरु गरीब निवास यंत्र जामे सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी के पावन स्थान की हाजरी पर गुरु की संगत वालों गुरबाणी की शपथ कीर्तन सत्कार करते बेनती मैं अरदास कराई पातशाह सतगुरु आप जी नाम जन कृपा रहमत बख्श देर उगता नाम का कल्प यात्रा।

खट करम करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जीव डियावर ना कोई तू जुग जुग एको।

काहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठव तुत पाता सकल मलेच करो रण घाता जे अस दुज तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुह मरे पुरख जौन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहे सब काल दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जाय निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध से

चौपाई सम सत्रह सहस भणी जय अर्ध सहस फुन तीन कहे जय भादव सुदी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा।

मोहे मन क्रम बचन बिचार चौपई मैं नगने सह प्रथम मनाऊं किशन बिशन कब हो नह ध्याऊं कान सुने पहचान न तिन सो लिव लागी मोरी पग इन सो

जय जय सुरलोक वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सवैया छतरी।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। श्री वाहिगुरु जी अरदास। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लय ध्याय। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण धियाइय जिस डिठे सब दुख जाए। ते

चक्रवर्ती चकार चक्र भुगते स्वयंभव स्वयं सर्वदा सर्वजुगते युकालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदा अंग संगी अपंगं विभूते देव ऋते को फतेह नुसरत मित्र व्याप्तज आज नान गुरु गोविंद सिंह जी श्री अकाल पुरख सहाय दरबार मंत्र दरबारा सच खंड वसे निरंकार लक्ष्मी खड़ी तुम्हारे दरबारा।

सचता पर जलन जा सच तेरे प्यार नाओ सुन मन रहस्यता पाय मुख द्वार सचता पर जाने जा जुग जाने जियो धरत काय साथ के विच देखता पियो सचता पर जाने जा सिख सचिले दया जाने जिके किच कुन दान करे सचता पर जाने जा आत्म तरित करे निवास सतगुरु पुछ के बहर कर निवास सच सब ना हो दार पाप कट तो नान प्रखण बिनती जिन सच फल

0: दखदार स्वरोग भयं जा सकामना हो तुम करता करना में ना ही जाओ करी ना हो बलहारी कुदत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहा हो जात में जो जोत में जाता कलकला पर फूलिया तू सच्चा साहेब सच्चा ने जिन की तीसर पार पया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो सगा महला दूजा
1: योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मणे खत्रे शब्दं सूर शब्द

नानक मेरे सने का एक रथवा जब जब फरवटाई है ज्ञान बुझता है सजग संतों का त्रमे रथवा त्रत्र जते का जोर रथवा दोपहर तपे का सतग

बाहर दुनिया अंदर फैराट सुटते रजने उतरन आई मैल जिन पट अंदर बाहर गुदरते बल संसार तिन हु लगार सिद्धिक ने विचार रंग हसे रंग रोवे चुभी कर जाए परवाना किसे कर बस चेनाए दरबार ऊपर खर्च मंगा जबे देता खाए दीवाने को कने